0: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं तत् प्रसाद सवैये श्रावक सब समूह स्नान के देख फिरो कर योगिती के
1: सुर सुरातन सोद सुधा देख संत समूह अनेक मति के
0: सार ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे तो पान पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति जिन एक रति के
0: मितांजलि जर सांग नूप तांग सुरंग सुवारे
1: कोट तो रंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूपली विद्याव शीश ना जात बिचारे
1: इते भय तो कहाँ भय भूत अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: जीत फिर सब दे किसान को बाल तो मृदंग नगारे
1: गोचर गुड़ के जान के सुंदर हिंसित है राज हजारे
0: विक भगवान की धूप कौन रे नहीं जात बेचारे
1: श्रीपाल सिंह भगवान भजे बिने अंत को अंत के धाम सुधारे
0: स्नान दया दाम दास सुंदर नेम अनेक विशेख है
1: वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जमान सुबान की पेख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न लेंगे
0: मितंगन मान में लेंगे
1: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे
0: वीर अपार बड़े बरियार बचारा सार की धार पुछैया
1: तोड़त देश मवासन माते के जान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही जग चाल लवैया
1: साहिब श्री सब को शरणायक जाच कन एक सो एक दवैया
0: दानव देव फिरिंदन सच भूत भविख भगवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थार तपेंगे
0: मन प्रतापन बाढ़ जैसपन पापन के वो पुंज खपेंगे
1: सा समूह प्रसन्न फिरे जग छत्र सब लोग चपेंगे
0: मानव इंद्र की तप जौन से लोग को राज करेंगे
1: कोट शिनान गजात गदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे
0: ब्रह्म जी प्रधान से जम फास भरेंगे
1: जी नर श्री पद के प्रसन्न भगत नर फिर न दे तरेंगे
0: हाँ पे हो जो दो लोचन मूल कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो
1: ना फिर लिए सात समुद्र लोग गए ऊपर लोग आयो
0: वास की विज्ञान से बैठ कर ऐसी ऐसी सो बैस बतायो
1: सात कहो सुन ले सब जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो
0: पहन पूछ रहे हो सिर का लिंगरे लटकायो
1: काहू लखे और वाची दिशा में काहू पिशा को शीश नवायो
0: कहू बतान को पूजित है मस्को
1: कोई प्रतान

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाईयां
0: राग रतन परवार प्रिया शब्द।

श्री भगवती जी की पाशारत में प्रथम भगवती से मैं घर को नान खरीदा फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोपिन नो सिमो श्री हर आय श्री हर कृष्ण दयाय जिस तिथि सब दुख जाए तेग बहादुर सिमया कर नौन दावत आय सब ताय होई सहाय दसवें पासा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताय होई सहाय रसा पासा है जी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास दर्शन की दादा के अंदर के बोलो जी पंजिया प्यारा जो जब जारिया चालिया मुखिया हटिया चपिया चपिया जना नाम चपिया बंद चकिया दे चलाई देख वाही दे के अंदर की ता जना प्यारा सुचारी कमाई दाता अंतर के बोलो जी जिना सिंह सिंह न्याय रम है सी स्थित ते मन बन के ताई को प्याला है या चल कर चले आर्या नाव धन जाय गुरुद्वारा दे सेवा लेकर बनिया की दिया तेरे में हरे सिक्की कैसा स्वसन नाल माय तेना दी कमाई दाता अंदर के बोलो जी पंजा तक था सरपत गुरुवार घर टूटा मन बोलो जी ब्रत में सरपत खालसा जी के अरदास है जी सरपत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवे चित आवन का सबका सर्व सकोय जा जा खालसा जी साहेब ताहा तार शायद देख देख फतेह ब्रत की पैज बन की जीत छह साल की सहाय खालसा जी की बोल हले बोलो जी सिखान सिखी दान के स्थान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना से दान नाम दान श्री अमर श्रद्धे स्नान चौंकिया चंगे पोंगे जो को जो गाता तम गाजे काट का सचिन के बोल भले बोलो जी सिखाना मिनी का मत उच्ची मत पत तारा का आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਉ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਜੀਉ ਖੇਨੇ ਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਣੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਮਰ ਵੇਲਾ ਨੇ ਸਿਮਨ ਨੇਮ ਬੰਦ ਪਿਆਰਾ ਦਿਆ ਠਾਸ ਹੈ ਜੀ ਅਖਰ ਵਟਾ ਕਾਚਾ ਪੁਰਚਿਤ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਪੰਥ ਗਲਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ

भाव अंतर बाहर सो प्रभ जाने रह अलप्त चल दे ते कर आने ऊपर याद सर्ब तै लोई सच नानक अमृत रस पाया।

सेवो सतगुरु समुंद अथाह पावो नाम रतन तन लाहा बिखिया मल जाए अमृत सरनावो गुर सार संतोख पाया।

भोग न पाई बिन सतगुर अलख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करे उदयाना, जपत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाई बिन सतगुर।

जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मिटे तुरो फरमाया, सा संगत मैं तिन ही वासा, जिन को तुर लिख पाई है। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चा शब्द ताड़ी चित लाए।

अंतर शब्द सदा सुखदाता गुरमुख बूझे कोई है। आपे मेले मेल मिलाए पूर्व लिखिया सो मेट न जाए। अंदिन भक्त करे दिन राति गुरमुख सेवा होई है। सतगुरु सेव सदा सुख जाता है। आपे आए मिलया सबना का दाता। हमें मार तृष्णा अगन निवारे शब्द चीन सुख होई है। काया कुटुंब हो ना बूझे गुरमुख होए ता।

कह जिस कुत्ता जम काल तिस कदे न छोड़े अंत गया पछताई हे। सच्चा शब्द सच्ची पत होई बिन नाम मुक्त न पावे कोई बिन सतगुरु को नाउ न पाए प्रभ ऐसी बणत बनाई हे। सिद्ध साधक बहुत विचारी के अनस नाम रते निरंकारी जिसनु आप मिलाए सो बूझे भगत पाए पौ जाई हे।

गुरु की साखी अमृत भाकी सच्चा शब्द सच सो भाकी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच समाए दा गुरमुख मन निर्मल सत सरनावै मैल न लागे सच समावै सचो सच कमावै सद ही सच्ची भक्त दड़ाएं दा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावै करणी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएं दा गुरमुख सची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी गुरमुख सदा सेवै सच।

आपे वजाए वजावन हारा कट कट पौन वह एक रंगी मिल प्रणाम पमने सब वजाए दा करता करे सुने चो हो वह गुर कै शब्दों मैं खो वह गुर प्रसाद जी सदे वड़े।

सतगुर ते विछड़े तिनी दुख पाया, आंदन मरिया दुख सुभाया, मत्थे काले मैल न पावे, दुखी विच दुख पाए दा सतगुर से वैसे बटभागी, सहज पाए सची लिव लागी, सचो सच कमावै सद ही सचे मैल मिलाएंदा, सचे मेल मिलाएंदा, जिसनू सचा दे सो पाए, अंतर साच भरम चुकाए, सच सचे का आपे दाता जिस दे वैसो सच पाएंदा, आपे करता सबना का सोए, जिसनू आ बुझाए बूझे कोई, आपे बख्श

रंग सचे माए समाए पूरे भागे रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाए दा मन मुख बहुत करे अभिमान दरगे कबे न पावे मान दूजे लागे जन्म गवाया बिन बूजे दुख पाए दा मेरा प्रभ अंदर आप लोग आया गुरपुरसा दियर मिले मिलाया सच्चा प्रभ सच्चा वापारा नामा मोलक पाए दा इस काया की कीमत किने न पाई मेरा ठाकुर ए बणत बनाई गुरमुख वैसो काया सोधे आपे आप मिलाए दा काया भी टोटा काया विच ला गुरमुख जैवे प्रवाह गुरमुख वणज सदा सुख पाए सहज सहज मिलाए दा सच्चा मैल सचे भंडारा आपे देव देवन हारा गुरमुख सलाए सदा सुख दाते आपे मेल मिलाए आपे मिले कीमत पाए दा सच्चा मैल सचे भंडारा आपे देवै देवनहारा गुरमुख सलाए सदा गुरमुख सलाए सुखदाते मन मेले कीमत पाए दा काया विच वस्त कीमत नहीं पाई गुरमुख आपे दे वड़े आई जिसदा हट सोई वत जाना।

खतरा करते भोग विलासा है, जो फिर कहे सो धन तत् माने, फिर धन श्रृंगार रखे संगाने। मिले कतर वसै दिन राति, फिर उदय दिलासा है, धन मांगे फिर बहुत आवै, जो जो पावै जो पावे सो सान में दिखावे। एक वस्तु को बहुजन साक है, धन रहति भूख ब्यासा है, धन करे बिनो दो कर जोर, फिर परदेश नव जाओ सो कर मोरे। ऐसा वणज रहो दिन ग्रह भीतर, जित उतरे भूख ब्यासा है। सगले कर्म धर्म जग सादा, बिन हरा सुगने तिल नहीं लादा, भई कृपा नानक सत्संग है, तो धन पिर अण दुलासा है। धन अंधे पिर चपल सयाणा, पंच तत् कर चुन जाना, जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुरु पासा है। धन कह तू वस मैं नाले, फिर सुखवासी बाल सुख गोपाले, तुझे बिना हो कितना लेख है, वचन दे छोड़ ना जासा है। फिर कहे आहो हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जिस कारण छंदा, जिच रखे ते चर तुम संग रहना, जसद दौड़ सदा साहे। जो प्रे वचन कहे धन सच, बिन सुख धन धन कशुन बूझे, समझ लगे चंचल काचे। बहर बहर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हसाए, आई आगे फिर बुलाया, ना धन पुछी ने मता पकाया। ऊठ सुधार उसदा झूठर माटी, देख नानक बंदन महासा है। रे मन लोभी सुन मन मेर है, सतगुरु साहब जी नस दे रह, बिन सतगुरु पच मुए साकत, नुकरे गल जम फासा है। मन को आवे मन को जावे, मन को फिर चोटा खावे, जितने रक्षे मन को भोग, गुरमुख लेप नमासा है। गुरमुख सोए जे हर जे उभाया, ते कौन मिटावे जे प्रभु माया। सदा आनंद करे आनंदी, जिस सिर पाओ पाया गल खासा है। ओम बलहारे सतगुरु पूरे, सरण कदाते बचन कसूर है, ऐसा प्रभु मिलया सुखदाता, विचरण कते जासा है। गुण दान किच कीम न पाई, घट घट पूरे सब ठाई, नानक शरण पै दीन दुख भंजने, हों रे नितरे जो दासाए। मारू सोले महला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, करे आनंद आनंदी मीरा, घट घट पूर्ण सिर शरण वीरा, सिर सह के साचा साहब, और नाई को दूजा है। हरख अंत आनंद दयाला, प्रगट हो प्रवे सर्व उजाला, रूप करे कारे वेखे विकसे, आपे आप पूजा है। आपे कुदरत करे विचार, आपे सच करे पसार, आपे खेल करे आपे खेल, खिलावे दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है। साचा तक सची वडे पासाए, सच खजीना साचा साही, आपे सत्र सब साचा, सचे सच भतीजा है। सच वखर सच पाव सचे कीरा, सचा थान सदा प्रभु तेरा, सची कुदरत सची वाणी, सच साहब सुख जाहे। एको आप तुह बड़ राजा, हुक्म से के पूरे काजा, अंतर बार सब कुछ जाने, आपे ही आप भतीजा है। तूड़ रसिया तूड़ भोगी, तू निर्बान तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरे, अमृत दृष्टि जाहे। तेरी दात जे तो होवे, देह दान सब सहजंत लोवे, तोड़ आवे पूर्व भंडार, त्रिवत रहे अभी जाहे। जाचक जाच ऐसे साधक बनवारी, जाचा जति सती बन सुखवासी, एक ददार सगले जाचक, देह दान सृष्टि जाहे। करह भगत अर रंगे पारा, खिन मैं थाऊ था पनहारा, भारो तोल बेंद सुमी, हुक्म मान भक्ति जाहे। जिस दे दर सोए सो सोए तू जाने, उस गुरु कै शब्द शब्द सदा रंग माने, चतुर स्वरूप सियाणा सोई, जो मान तेरे पवि जाहे। जिस चीत आवे सो वाहा, जिस चीत आवे सो साचा शाह, जिस चीत आवे तिस पवन कहा, अवर कहाँ किच की जाहे। कृष्णा बोझी अंतर ठंडा, गुरपुरे लै टूटा गंडा, सुरत शब्द रजंतर जागी, अमर चोल पी जाहे। मरे नाय सा सदी जीव, मर पे अपना सी थीव, ना वो आवे ना वो जावे, गुर दूर किया परमी चाहे। पूरे गुर की पूरी वाणी, पूरे लागा पूरे माय समानी, चढ़े सवाय नित रंगा, कठिनाई तोली जाहे। बारह कंचन शुद्ध कराए, नदर श्राव निश्चड़ाए सचड़ाए,
परख जाने पाए सराफी फिर नाई ताई जाहे अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दासदा कुर्बानी संत संग मान सुख पाया देख दर्शनी मन पी जाए मारू मरला पंजवा सोले एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरु गोपाल गुरु गोविंद गुरुदयाल सदा बख्शंद गुरु सा सिमर कट करमा गुरु पुत्र स्थाना है गुरु सिमर सब कलिख नास है गुरु सिमर जम संग नास है गुरु सिमरत मन निर्मल होवै गुरु का टेप माना है गुरु का सेवक नरख जाए गुरु का सेवक पार बनते आए गुरु का सेवक साध संग पाए गुरु रखद करता निजी दाना है गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए सतगुरु पेट हर रस हर जसम बनिए कल कलेश मिटाए सतगुरु हर दरगे पाए देवे माना है अगोचर गुरु दिखाया भूला मार्ग सतगुरु दिखाए गुरु सेवक को विघ्न लग भक्ति हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है गुरु दृष्टाया सब निठाए जल थल पूरया गुसाए ऊच ऊन सब एक समाना मन लागा सह त्याना है गुरु मिलिया सब तिश बुझाए गुरु मिलिया ने जो हे माए सा संतोख दिया गुरु पूरे नाम अमृत पी पाना है गुरु की बाणी सब मैं समानी आप सुनी तै बखानी जिन जिन जपी ते सब निस्तर तिन पाया तिने चलथाना है सतगुरु की महिमा सतगुरु जाने जो कि करे सो अपन भाणे साधु धूर जाने जन तेरे नानक सतगुरु बाना है मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आन रंजन ब्रह्म निरंकार सम वर्ते आप निरारा वरण जात वरण चहने कोई सब में श्रेष्ठ उपाय लख जरासी जुण पाए मन को रब दी वढाई पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएंदा कीता वे तिस क्या कहीए गुरमुख नाम पदार्थ लईए जिसे आप भुलाए सोई भूले सो बूझे से भुजाएंदा हरख सोग का नगरे किया सो से बुरे जोग सतगुरु चनिया।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टभाई जय प्रसाद छति अमृत खाए तिष्ठा कर कर रखण आए जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सुमृत प्रमुख पावे जय प्रसाद सह सुख मंदिर तिसे ते ऐसदा मणिंद्र जय प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पैर सिमरो तिसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ते आई ते आवन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग तरड़ भावै जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तिरुरा धर्म मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब द्रगी मन पावै नानक पासे ती कर जावै जय प्रसाद रोकंचन देही लिव लाभ रस्ति श्राम सने जय प्रसाद राव लहरैत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद ते सब छिद्र ठाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद वि गुण पाहु जे मन सा सा सिमरो प्रभु चे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक तां की भगत करे जय प्रसाद भूखन पहरि जे मन ते सिमरत गाल सकी जे प्रसाद आसवास सुवारी मन ते प्रभु को गुण विसारे जय प्रसाद बाग मुलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाए उठत बड़ सत से आए तिसे ते है जो एक अलख हाउ हणती रखे जय प्रसाद करे पुन बोदान मन अठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद उजार विहारी तिस प्रभु को सात सात चिदारी जय प्रसाद तिर सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जय प्रसाद तिरने जा सो सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद त्रिपत्र गुरु प्रसाद नान जस के जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद पेख समाज जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय वसना जय प्रसाद हस कर चला जय प्रसाद संपूर्ण फल जय प्रसाद परम गुद पावै जय प्रसाद सुख सह समावै सह प्राप्त आगो रुकत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद बल संसार तिस प्रभु को मूल नमन विसार जय प्रसाद त्रिपर तिरा प्रताप रेमन मूर्तता को जा जय प्रसाद त्रि कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तु पावै साचरे मन मेरे तुता सुरा जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप गुहै सुहार गुण गाव प्रभु कृपा तो हुए प्रगास प्रभु दया ते गुण विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते माधु तुम होए सर्व दान प्रभु तेरी माया आप कछु न किन्हु लया जित जित लाभ तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथा अष्टपदे साधक संग मुख उजल साध संगल सगली हो साधक संग उठे मान साधक संग कड़े सो ज्ञान साधक संग जी ब्रह्म नीरा साध संग सबूत नबीरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधक मैम बरणे कौन पराणी नानक साधक सुबह परमाय समाणी साधक संग उचर मिले साधक संग सदा प्रभुले साधक संग अम्बस पंचा साध संग मृत रस पंचा सात संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कदम तावै सात संग सदमन पावे साधक संग माया ते पेन नानक साधक संग नानक प्रभु सो प्रसन्न सात संग दुश्मन सामे साधु के संग मा पुणे सात संग के सुने बैर साधक संग न भिगा पैर साधक संग न ही को मंदा सात संग जाने परमानंदा साधक संग न ही उताप साधक संग ते सव्या आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कभू तावे साधक संग सदा सुख पावे साध संग सगुए चले साधु के संग अजर सह साधक संग बसे थान ऊचे साधु के संग मैल पहुंचे साधक संग दुरे सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम धान नानक साधु के कुर्बान साधक संग सब गुण उधारे साध संग साध जनमीत कुटुंब सारे साधु के संग सोतन पावे जिस संते सब को रसावे साध संग धर्म राय कर सेवा साधु के संग सो साधु के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गाय साधक संग सर्वथन काम नानक साधक संग सब जनम साधक संग नाही किछ काल दर्शन पेट तोत निहाल साधक संग लोक तारे साधक संग नरक प्रहरे साधक संग सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधृत बसे नान कुदरे सा सुन रसे साधक संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाव साधक संग न मंथे विसरे साध संग सर पर निस्तरे साधक संग के भ्रम मीठा साधु के संकट का डीठा

पतियो सुवान जो जाने मैं जो गुणवंत सो तविस्ता का जन आपस को क्रमंत कहा वे जन्म मरे भोजन परमावे तन पुम का जो करे कुमान सो मूर्खंदा गयान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी विसावे नान किया मुक्ता के सुख पावे तन मंतावे कर कृपावे तरण समान कर संग न जावे बहुल असकर मानु कर प्रक्रियास पल पितरता कह विनाश सबते आप जाने बलवंत किन में हो जाए पसमंत किसे न बदे आवंकारी धर्म रह तिज करी खुवारी गुरु प्रसाद जा का मटे मान सो जन नानक दर गई पुरम प्रवान कोट कर्म करें उतारे संपावे सगले बिरथा रंग तपस्या करे अंकार नरक से फिर फिर अवतार जतन करे आतन में दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो पला कहा वै तिसे पलाई निकने आवे सर्व ग्रीन जा का मन हो कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते का सोए तब इसको सुखनाई कोई जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग रूप जुन में फिरता जब तारे को बारी मी तब लग नहीं चलना चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म हृदय सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक को छूटे सहस खटे ला को उड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे नको कुख्या की करे न तृप्तावे खपक मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ वीर तेज काजे नाम रंग सर्व सुख बड़ भागी से प्राप्त हो करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करणे हार इसके हाथ का विचार जैसे दृष्ट करे दस होए आपे आप आप सोए जो कुछ किन सो अपने रंग सब ते दूर सब के संग बूझे देखे कृप भी कापे अनेक मरण बिनसे आवण जाए नानक सदी रह समाय आप उपदेश समझे आप आपे

के राज मैं राजयोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रसत मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया जहाँ की लीला की मित ना है सगल देवा देव गाय पिता का जन्म के जाने भूत सगल प्रोई अपने सूर समत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ते आवे से तय गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाय ऊच नीच इसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना विद किनो विसार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन माहे पूर रहे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर वंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के धारे सगल जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कार कृपा निस अपने नाम लाए नान चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूर सत सत जा की बाणी सत पुरख सब मै समाने सत कर्म जाके रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तिसे सब भली सत ना प्रभ का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोय नाम जब ता की गत होए आप सत किया।

सेव गुर की मत ले विश विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सत गुर जिस हृदय हर नाव अनक बार गुर को मल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग रता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नाहीं कछ भरम सह सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरु वड भागी पाइय सफल दर्शन पेकत पुनीत परसर चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर भजन करन अगाने मन संतोखा दंपतिया ने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तसलह मिलाए जे बाए कुसत नेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पौंडित प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंदा नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सत बलिहारी सत गुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुरखा नाहीं करे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास अठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक दे मोह माया कै संग न लेप मन मै रखे हर हर एक अंधकार दीप पर गासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तब तुम्हारे ठाण वरताई अंध भया दुख नाठे भय जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपौ हे बसे सगल व्याधमन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी सात संग जप नाम मुरारी थित पाए चुके भ्रम गवन सो नानक हार हार जसरवन निर्गुण आप सरगन पियो कला धार दिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हार बिन दूजा नाही कोय सर निरंतर एको सोए पोत पोत रविया रूप रंग पय प्रंगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी

के तनसार अष्टपदी सर्जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार अवर पाप समित विसार हो, चरण कमल हृदय मह उतार हो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ। एह तन संचो हो भगवंत, तन जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाए, जिस धन कौ चार खुंट उठ तावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख कौ नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा भज हर की सनी, अनक पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगे परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दैद धावत आवै ठाए, ता को विघ्न लागे कोई, जा कर बसे हर सोए कल ताती ठंडा, हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भाव बिनसे पूर्ण हुए आस, भगत पाया आत्म प्रगास, तेत घर जाए बसे अवनासी, कव नानक काटी जा पाती तत विचार, कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा, वाह गमन मिटे प्रभ सेवा, आप त्याग सरन गुरुदेव, यो रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यों पावना छूटन हारे, सिमरत सात बिन बिचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वांच नानक फल पाए, संग न चाल तेरे धना तू क्या लपतावे, मूर्ख मना सोत मीत कुटम्ब हर बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इन ते कहो कवन छुटकारा, सहस्ती रथ सवारी झूठा डाफ झूठ पसारे, जिन दियर से बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू ले आने भगत, बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल मिक जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाय नान गुण गाओ, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जय हो मैं बिफैल, होहे अचिंत बसै सुखनाल, सत ग्रास नाम समाल, शाल सियान पुसगली मना, सात संग पावे सच धना, हर पूंजी संच करो बिहार, यहाँ सुख दर गै जयकार, चरम निरंतर एको देख, कौ नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ आप, अणक विसार एक ते पय एक आराध, प्राशित गाय मन तन अंतर एक प्रभ रता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत

राष्ट्रपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांग तूर पार ब्राह्मीर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमर थ्यों लागे।

सेवको सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई स्थिति उपर नहीं विचार जा कै मन बस्या निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर।

सुखी दुखी नर जगत में धर्म करे, जे कोई सुखी करे तो सुख बढ़ाए, दुखी करे दुख होए। सो आप सरबत संगतां दा परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐं आख्या जांदा जी कड़ाह प्रसाद जी इकबार सिंह वरता रहे ने, सरबत संगतां जिन्हियां भी आप पहुँचे हो, आप सरबत संगतां जी परिवार वालों गुरु का लंगर तैयार किया गया, सारिया ने लंगर लोड़ अनुसार छक के जाना, परिवार की इस बेनती प्रवान करना जी। हुण इत्थे संपूर्ण समाप्ति है, कड़ाह प्रसाद देग दा वार सिंह वरता रहे ने, देग प्राप्त करो, गुरु का लंगर तैयार है सरबत संगतां लई, लोड़ अनुसार सारे ने गुरु का लंगर छक के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, भुलां चुकां की मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर गुरु रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध अंतन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग तबर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुइजै मन आठ पैर ताका जस गा बीजै जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जासन जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तुदर गय मन पावै नानक पासे ती कर जावै जे प्रसाद रूह कंचन दे ही लेवलावो तुस राम स्नेह जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावो हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सकल छत्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु चै जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन हरी जै मन ते सिमरत गवाल सकी जै जे प्रसाद अस्वस्थ सवारी मन ते प्रभु कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सह त्याई तुसे त्याज वेक अलख है ऊहा नानक तेरी रखा है जे प्रसाद करे पुन बोदान मनाट पर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितार जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिना जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पेख्या बिस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद अस्त कर चला जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सा प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल नमन बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जन मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप।

संत के दुखन हर जा घटाए, संत के दुखन जम ते नहीं छुटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के अति को रखे न कोई, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै नानक, संत संग निंदक भी तरै, संत कै दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिक ज्यों क्रमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब कुछ चला, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दुखी कथाओं को नाए, नानक संत भावै तो भी गत पाए, संत कै निंदक मात आई, संत कै निंदक टिक न पाई, संत कनंदक मा त्यारा, संत कनंदक परमेश्वर मारा, संत कनंदक राज तेहीन, संत कनंदक दुखी अरदीन, संत कनंदक को सर्व रोग, संत कनंदक को सदा विजोग, संत कनंदा दोग मैं दोग, नानक संत भावे दुसका भी होए मोख, संत के दुखी सदा पवित, संत के दुखी किसे का निमित, संत के दुखी को डन लाग गया, संत के दुखी को सब त्याग गया, संत के दुखी मांग कारी, संत के दुखी सदा बेकारी, संत के दुखी जन्म मरै, संत के दुख न सुखते टरै, संत का दुखी को नाई ठाओ, नानक संत भावे तले मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटै, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को देन परमाई है, संत के दुखी जुड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किशना है, अपन बीजा पे खाए, संत के दुखी को अपना रखन हार, नानक संत भावे तले बाहर, संत का दुखी उम्बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पाव किंद नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माए दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक तुर ही पाया, नानक जो तिस पाया सो किरत निंदक तुर ही पाया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत के दुखी सदा सहकाई आ, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई आ, संत के दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न त्रष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए पै, किरत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब किरत सकै ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास की रास, सब किछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थी, अपन के लाभ करने हार, दूसर कौन काम विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे,

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रावधान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मेर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल च्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की निष्ठ मा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन तृप्ताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने सो पर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे शरण सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेव किन सुधा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया शपूनी सरदा सा पूरी रव रया सा संग हजूरी निस्का सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों विसरे जे काल न पन सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जिया सो क्यों विसरे जे अगन मह राखे गुर प्रसाद को बिन ला लाखे सो क्यों विसरे जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गंड है गुरपुरै ततेह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया सारण संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपे अवरे नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगति तन होसी सार सर्व कल्याण सुख निंद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुखा होत नास नानक नाम जपो गुणता सुभजी प्रीत प्रेम रस चाव मन तनंतर ही स्वभाव नेत्रोपेख दर्शक होए मन बिकसे सा चरण धोए परजना के मन तन रंग बिरला को पावे सांगे एक बस दिजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ता किमा कहीं न जाए नानक रया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल नाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार परजना के प्राणी आधार जो जो जपे सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अन के राज भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई ब भोजन का प्रसंगीत रचना जप दी हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सार संग प्रभ दियो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार किछु ना दृष्टेता पाप पुण तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किसा कमात जब इसका वर्ण चेह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्याप्त जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कांकस होवत परम अपन केल आप वर तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गणी जब एक हर अगम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सख्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अपनासी सुख अपन आसन तय जन्म मरण कहो कहाँ बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही परजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो कह धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छदर लगत कहो कीस जय जोर स्वरूपी जोर संग समावै तय किसे भूकम तृप्तावे करन करावन करने हार नानक करते का नह सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय बेरक तेव का कोचीन जब अपन आप उतारे तो सगन सगन कहाँ बिचारे जय अपन ऊच अपन अपनेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मण बिस्म रहे बिस्माद नान गत अपनी गत जानो आप जय छल छेद अपेद समाया वहां किसे व्यापत माया आपस को आपे देश तय गुण का नाही प्रवेश जय के भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपति हरा तय कौन कथे कौन सुनने हरा बहो बेअंत उच ते उचा नानका पुसको आपे पहुंचा जय आप रचियो पर पंचकार तय गुण मैं किनो विस्तार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हाँ मैं मोह भरम पै पार
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਮਖਿਆਣ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇਖੇ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਜਹ ਭਗਤ ਭਗਤ ਆਪ ਜਹ ਪਸਰੇ ਪਾਸ ਹਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਹੂੰ ਪਾਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਬਣੀ ਆਪੇ ਕਉਤ ਕਰੇ ਅੰਧ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਜਨ ਨਿਰਜੋਗ ਰਿਸ ਭਾਵੈ ਰਿਸ ਆਪਣਾ ਲਾਵ ਰਿਸ ਭਾਵੈ ਰਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਬੇਸ ਸੁਮਾਰਿਆ ਥਾਇ ਗਣਤੇ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰ ਤਿਣਹਾਰ ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੇ ਆਪ ਸੁਣਿਆਰ ਆਪੇ ਕਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਦਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਾਏ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਣ ਸੂ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਗੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤੱਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾ ਕਹਿ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਨਿਸ ਡਾਕੇ ਤਿਸ ਕੋਹੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸੋ ਮੁਵਾਰ ਸਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਟ ਜਾ ਕਹਿ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤੇ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਦਿਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਬਿਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਜੀਅਨ ਬਪਾਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਤ ਨਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਹਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕ ਨੈ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਸਟੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਅਣਦਿਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਹੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵੋ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ।

सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत।

किया, लाख करोड़ी वंदना करार का नाम जबर निस्तरा, अनक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जब तंगावे, जिस मार में जात केला, तैं हर नाम संग हो सहेला, सा नाम सरा के आईया, नान जनों परमगत पाईया, छूटर नहीं कोट लख बाही, नाम जब तय पार करा, हिरियन को वेंगे आए सुधारा, हर का नाम तत्काल उदारा, अनक जो नर्मय मर्जाम, नर्मय पार विश्राम, हों मेला मर कबू न तो है, हर का नाम कोट पाप हो है, ऐसा नाम जो मन रंग नाम पाइए साल का संग, यह मार के गए जाए न को साल का नाम हो सा, ये पंडे मंद गुबार हर का नाम संग जारा, जहाँ पंथ तेरा कोना सियानू, जहाँ त्रिखा अंत जा कर खै, भगजना की वर्तन नाम संजना का मन विश्राम, हर का नाम दास की ओर ठहरते नाम निरंतर को ठहर कर संदे रात मन तन रंग रते रंग एक क्या उनका रूप रंग हर नाम जल कपड़ा न पांग जे आई हर के नाम जल सोबा पाई

जाचक जन जाचक प्रावधान कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्तान पूरन पुरख नहीं डुलान सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध का संग परे शरण आन सब त्याग अंतर पर आस अंधे विलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मात लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक किन्नो सरा निहाल बंधन काट मुगत जन पया जन्म मरण दुख परम गया इस पुनी श्रद्धा सा पूरी रव रहे आसा संग जूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरह जे काल न पान है सो क्यों विसरह जे किया जन है सो क्यों विसरह जिन सब किस दिया सो क्यों विसरह जे जीवन जिया सो क्यों विसरह जे अगर मैं रख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों विसरह जे विखते काट है जन्म जन्म का टूटा गंड है गुर पूरे तत् हे बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एक काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो वर नाम जपावो भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निर्नाम बूढ़े जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्र पेख दर सुख होए मन विकसे सा चरण धोए भगत जना का मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचल सरा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटां करत प्रतपाल आल पुरख कारण करताल भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण आर नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुगल मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए वाहिगुरु अनकराज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरनी।